0: कुलास तुम कुफाफी
1: बमंगा तक आम कोमिन नंबुमंगा केल संजयं बाईसेरों फुकतान नंबुमाइंस फावटन संजयं नंबुमाइंस अनोटन समासु निनिन नमीचे ट्रम्प सोफा अंड्रासन रासलाव टेनिस फिजरा नताने ते पियांस चते ओमनी रोपुल ते ओयों नाउस तमले लेफोलुन निस फंड्राइसना नारा नंद्राया ते ओटन फिट फिटिन ले प्रेस नॉ इस मुझांस ते ना प्रेस नॉ फोटन ये कार्टे मोबाइल ते फिर पेरां फुट से ले सुरात ना टेन टेन से सेम बस सुरात प्रेस नॉ ते सान ना तो ने ने यंदो सुरात ना रा ओटन ये वेतना मेनो तुझी सुना तो न तुम रखा ये सिस्टी लो इस